0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तोता गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति।

0: तुसी कैनिन भर के पानी कैसे ना?
1: हाँ।
0: केरे हाथ नल?
1: ऐस नल।
0: अच्छा, ताफर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
1: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार में क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला परम पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

पारिक अनक लख बरिया अनठोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारिक बपुरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लै के उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिए, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

संसार ते माया दा पहरा है ते लोकां दे चार कदम चलने औखे होए, माया दे बंधन च बन्ने होए लोग, अन्ने होए लोग, हनेरे च हथ मारदे फिरदे ने, अज्ञान दे नेरे च भटकदे फिरदे ने, पर गुरु नानक दी गल जिन्हां ने सुन ली, गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, रस्ते दी समझ आ गई, पता लग गया किवें जीना है। बाजो गुरु दा बंदा विकारां दा ग्रसिया होया, बुराइयां वाले पासे फसिया होया। बाबर कहिंदा है ना, शराब दा प्याला अगे रख के कहिंदा है, लो तन गुरु नानक कहिंदे ने ना, इह तां बंदे नूं विगाड़न वाली चीज, इह किसे काम दी चीज नहीं, छड़ दे इस नूं। कहिंदा मेरे उस्ताद ने आखिया है, बाबर बैश कोश के आलम दुबारा ने। तन गुरु नानक कहिंदे ने तेरे उस्ताद ने गलत किया है या तू गलत समझे। ए भी कोई गल है कि बाबर मौज कर ले, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। तेनू मैं एक गल दसना, इस गल नूं थोड़ा जिहा ठीक कर। किवें? तन गुरु नानक कहिंदे ने बाबर बहोश बाश के आलम दोबारा ने। लुट्टन मारन तबाह करन ते लोकां नूं दुखी करना तेरा जीवन नहीं होना चाहिदा, ऐश प्रस्ती जीवन नहीं होना चाहिदा, होश नाल जीना है, समझ नाल जीना है। बाबर बहोश बाश के आलम दोबारा ने, होश नाल जी, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। गुरु नानक जीवन बदल देंदे, होश विच ले आउंदे ने बदमस्त बंदे नूं, खरमस्तियां करदे बंदे नूं होश च झटका दे के, होश च ले आ के पापां तों वरज के सेवा ते परपकार वाले पासे लाउंदे ने, बुद्धि च प्रकाश बख्श।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे।

ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन।

पैसा फरमान करदे हन कि भगवान कृष्ण सारे संसार नूं की संदेशा दे रहे हैं। कहंदे ने सुदामा अपनी पत्नी दे कहन ते चलिया सी कि भगवान कृष्ण कोल जावा ते अपनी गरीबी दूर करवा दे, मगर क्योंकि दोनों ही एक शिष्य दे रूप दे विच हन, गुरु एक है, शिक्षा एक गुरु पासों लई है,

महाराजे भगवान कृष्ण अपने मित्र नूं मिलन आया है। ते महानता यह है भाई साहब फरमान करते हैं भगवान कृष्ण दी कि जिथे सुदामे ने अपनी गरीबी नूं दूर करन वास्ते कुछ मंगिया नहीं, उथे भगवान कृष्ण ने सुदामे दी गरीबी नूं उहदे सामने जतलाया भी। नहीं ते अमीर मित्र कहिंदा है गरीब नूं बई तैनू कोई जरूरत है ते मैनू परमात्मा ने बड़ा कुछ दिता है, मेरे कोलों कुछ लै जा।

सुदामे नूं जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जिहड़े सन ओह नाश हो गए।

घोड़े ते सवार होके जालमा दी मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नू नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाने दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोल दियां ने, ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसतां इतिहास दियां कैसतां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा न पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे,

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटा है। एक वरी देवतियां ने विचार की थी देखिए ता सही ऐडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर ऐडे वड़े समुंदर विचों चीजां लभनियां ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे हैं क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है ऐडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ। ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया। जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे। ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई। ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता। उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया। इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे। जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां। लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया। पारजात दरखत नू इंद्र देवता

लभते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े हुए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने किया बचियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नू भी दरख दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नू आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नू पता लगा। उन आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदू पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही ने जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नू सुरत विच लियांदा। जेड़ा अमृत बचिया जगा पुट के उस नू दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता। ते लिखिया कि जिस जगा ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगा प्रगट हुई। इस जगा धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगा नू अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दी, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा

कीर्तन करने वाला। तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार, मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला, पर मैं वेला सी। कारे कहंदे ने कम

सोत कंदे निपुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाण वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती। गुरु साहिबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा है, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे ने, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा, सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो, जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ये सूरत बड़ी सोहनी, पर किन्नू दया मसंदां पंडतां साधुआ सन्यासिया किन्नू दया ये सूरत, क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके ले जाने आ, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतिया सन, अखां खोलिया, एक पहरेदार सिख नू कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया, दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे उठिया, अखां पूंजदा होया, पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार, कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया, सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे आ, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों ओह काबुल गया सी, दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओह कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਐ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਗਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਣ

साधु सन्यासी सारियां दी प्रीख्या लई सारियां पासियां तो नाराज होके हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साध संगत ते अपनी

औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी आनंदपुर साहब संगत बैठी कीर्तन

इन्हे नु सारी संगत मथा टेकन लग पई। कौन आया? गुरु साहबां दे महल माता साहब देवा। गुरु साहबां दे कोल आके खड़े हो गए, झोली अगे कीती, झोली विच पतासे ने, ओ पतासे बाटी विच पा दिते ते मुस्कुरांदे होया आखिया, पातशाह मेरा हिस्सा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, हां साहब देवा तुहाडा भी हिस्सा, मैं अमृत तैयार कर रहा सा मुरदिया विच नवी रूह फूकन वास्ते, जात पात ऊंच नीच खत्म करके एक नवा समाज बनाने वास्ते, पर तुसा इस अमृत विच प्यार मिठास सहनशीलता भुल दी। हुण जदों कोई अमृत छकेगा, जे चरखनियां ते चढ़ेगा तां वी बाणी पढ़ेगा, जे किसे दी खोपरी लाई जाएगी तां वी ओह बाणी पढ़ेगा, जे किसे दा बंद बंद कटिया जाएगा तां वी ओह बाणी पढ़ेगा। अमृत तैयार हो गया, अमृत तैयार करके जिन्हें पहला सिर दिता सी दया राम ने ओहदे सामने खड़े होए। एक अमृत का चुल्ला दया राम नूं दिता, पीण दा इशारा कीता। दया राम ने अमृत का चुल्ला जदों पीता, एक नवी बोली दिती ते गुरु साहबां ने कहा, कहो दया राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते हुण पंजां दे नाम भी बदली हो गए, दया हुण दया सिंह हो गया, ते तुसी हुण शेर हो, ते जिहड़ा शेर है ओह कदी डरदा नहीं। हुण तुसां जुलम दा मुकाबला करना है, जुलम खत्म करना है, गरीबां दी मजलूमां दी रखिया करनी। जदों पंजां ने अमृत छकिया ते हुण पंजां दे मनां दी अवस्था ए हो गई, बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाले मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हथां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असां सिर दे के अमृत लिए, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहबां ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका, मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजां प्यारिआं ने गुरु साहबां नूं अमृत छकाया ते हुण गुरु साहबां दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तों गोबिंद सिंह, ते दूर सारिओं इक सद उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे गुरु बणिआ ते आपे चेला बणिआ, इक नवा राह दुनिया नूं दित्ता। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ

हे करुणा निदान, हे पतत पावन, कृपा निदान जगत गुरु, तेरे तो बिना मैनु कोई आसरा नहीं। किस ही

गंधारव, तुरक, हिंदू, नाम वाक हैं, पहरावे भी वाक है, देश भी वाक है, और इन चीजों का असर इंसान ते होंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवे।

दसवें गुरु कैसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अल्लाह अपेक्ष होई पुराण ओ पुराण ओही।

अज दे नहीं सदियां तो चले आ रहे हैं। क्यों कुछ लोग धर्मी अखवांदे हैं पर धर्मी होंदे नहीं। धर्मी इंसान कदी किसी ते जुलम नहीं करता। धर्मी इंसान किसी का निरादर नहीं करता। भाई गुरदास जी अपनी वार विच बयान करते हैं कि ये देखो सच नूं छड़ के लोग किस तरह आपस विच लड़दे मरदे हैं। भाई साहब जी बयान करते

और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दोनों नादाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वरन चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

वेदां और कतेबां दा उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते जो चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया है। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होना।

निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया, राजभाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा देना एक औरत वास्ते, पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया, रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया, नहीं। भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इन्हां राजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पए।

कौन करे। मुसलमान हो जेड़ा अपने अल्लाह कोलो सारे वास्ते मेहर मंगे, सारे वास्ते रब कोलो दुआ मंगे। ते साहब जी कहंदे ने सर्ब जिया में रहमत होए ता मुसलमान कहावे, जेड़ा सारे कोलो प्यार मंगे, सारिया नू प्यार देवे, और जेड़ा अल्लाह कोलो भी सारे वास्ते मेहर मंगे, साहब जी कहंदे ने

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान यो कहेगा ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करने वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और ये जिहड़ा उपदेश है इसनूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा ओहदा जीवन सफल होवेगा।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है सो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

जियो तुम्हारी कृपा ते तुझ पछाणा तुम्हारी ओट तू है मेरा माणा तू बिन दूजा और ना कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो तू बिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई

जन को तब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे किस दिन आम की पथ परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

लेंगे पर तुम पे लेना तू मेरा देना जो तुम दे सोई सुख पैना जो तू दे सोई सुख पैना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार च ऐसा चल जाना एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा ओनू जाके बेनती करा तू ए कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना ओ मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहगुरू नाल पा के वे मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे आदर करना होवे ता भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने एदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हुआ अर्ज कर रहा हुआ मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ए वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु दा होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा है साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा है सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गादर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पा

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लेके जा रहे ते सच्चे पातशाह दे इस जल दे नाल इश्नान कर ले। जदों जल दी गागर ना टिकन दिती खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछे।

चुक चुक जा रहे साथ सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू ओ टैणी उतनी चुकदी चली जानी है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा कीती गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए साथ सगत।

बेशक चखड़ चलदा होवे मी बसदा होवे ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नितनेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शीश कर।

जियो लवत है नोह मीठा माया। कंचन नारी में जियो लोबत है वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हा।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनु अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा। आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे, जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल दे

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधव असी कहो जाए ते आप कहो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है, मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तू किन्ना दयालु है,

0: गुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे किस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध सिंह ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा है, ते नाम मिलदा कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना खैरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाएगा। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने